0: जिसके घर में बेटी की शादी के न्योते लिखे जा रहे हैं, हम उसे मौत की होली खेलने का निमंत्रण नहीं दे सकते।
1: El Música.